0: प्रेम विच एदा संगत जी चुबिया लाउंदा है।
1: ओ दर्शन हर चह बड़भागी,
0: किसे दे मन विच ऐसी इच्छा हो गई है वी पातशाह दे दर्शन करिए, रहिंदे जीवन अंदर इन्नी बंदगी करिए कि गुरु नानक पातशाह गुरु कलगीधर महाराज सनमुख दर्शन देवन जी।
1: विषय विराग किन्हू के होवा,
0: किसे किसे ने गुरु नानक दी संगत करके विषय बकारा वलो वैरागी हो गए ने, विषय बकारा वल जांदे नहीं, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावह, एह भीतर ते इनका डारह अपन निकट बलाव, ऐसी अवस्था हो गई है।
1: किन्हू सुख निज अंतर जोवा,
0: किसे ने संगत जी

तीन ताप हन आदि व्याधि उपाधि आदि जेड़े संगत जी मन दे रोग ने डिप्रैशन चिंता आदि जेड़े व्याधि ओ तन दे रोग ने बुखार कैंसर आदिक भयानक बिमारियां ते जेड़े उपाधि ने जीवन अंदर घटन वालियां घटनावां ने कोई संगत जी झगड़ा हो जाना एक्सीडेंट हो जाना आदिक एदा संगत जी आदि व्याधि

0: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिन गिन बदले पऊगा देना बैरनी
1: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिन गिन बदले पऊगा देना बैरनी
0: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिन गिन बदले पऊगा देना बैरनी
1: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिन गिन बदले पऊगा देना बैरनी
0: ला के समाधि मार चौंकड़े हुण ना तवी दे उत्ते बैण गए सिखां दी वैर ने हकूमते एक दिन लेखे दिन पैण गए सिखां दी वैर

सत्संग एक शब्द श्लोक रूप में है, थोड़ा जहा नहीं तो होने करके कई बार संगत नूं भुलेखा पै जांदा। एक श्लोक है जपजी साहब के खीर दे, ते एक श्लोक उस ही तरह का इन मिन थोड़ा जहा फर्क पा के गुरु अंगद देव पातशाह जी महाराज जी ने उच्चारण किया है। एक गुरु नानक देव पातशाह जी का श्लोक है उच्चारण किया होया, एक गुरु अंगद देव साहब जी का है। इन्हां दोनों विच थोड़े थोड़े भेद हैं, तीन चार। कई बार संसा कन्फ्यूज हो जाती है भी भाई साहब के कीर्तन गलत करी जाते हैं। हुण मैं शब्द पढ़िया सी वंदना करदे आ, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। कई मन विच ये गल होगी भी इत्थे ते पास लिखिया ते भाई साहब पासे पढ़ी जाते। सत संगत जे तुसीं हथ लिखित रूप देखोगे उत्थे पाठ पासे होगा, जे हथ लिखित तुसीं दमदमी भीड़ देखोगे ना उहदे उत्ते पास पाठ। मेरा दुख सुख कुछ ही पास नहीं है पासे ला नाल। जो भाई मनी सिंह जी ने लिखाई ला के गुरु दसवें पातशाह जी ने लिखाई सी, बहुत मूल मंत्र हैं जिहड़े छोटे कर दिते कट दिते गए, जां श्लोक पहला ला दिता मूल मंत्र पिछों ला दिता। जदों तुसीं संप्रदावां विचों पढ़ते हो फिर इन्हां भेदां नूं उजागर किया जाता है, दस्या जाता है कि यह पाठ इस तरह नहीं, इस तरह शुद्ध है। सत्संगत कई बार कई गल्लां विच बड़े भरम भुलेखे हैं, क्योंकि जिहड़े साडे बुद्धिजीवी हैं अपने आप नूं बुद्धिजीवी समझते हैं, बेड़ा गर्क उन्होंने किया। मैं ताण दी बाण तो है मेरे स्वामी, मैं तो दे आगे अरदास से पाठ अरदास सत्संग सहारी लगी है। तो अगले बल्ले उन्होंने पासे की थां ते कहा भी नहीं, गुरु साहब ने गलत लिखा दिता, इत्थे पास चाहिए। गुरु के उत्ते भी जिहड़े मनमुख बंदे हैं तर्क कर देंदे हैं, तो मेरे वर्गे सधारण मनुख ते तर्क करना किड्डी वड्डी गल है, मैनूं आउंदा कुछ नहीं। तो मेरे तर करना कोई वड्डी गल नहीं, जिहड़ा मर्जी करी जावे, क्योंकि जिन्हें विद्या घुटनी उन्हें कहना भी मैं सही हूं। पर जो गुरु दस जो गुरु दस्या वाट मरीदा जोली वाली गल करनी चाहिए, जिहड़ा गुरु सानू रस्ता दसदा है, जो सिख सानू गुरु दिंदा है वह धारण करनी चाहिए, क्योंकि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराला। असी तो हां हम अंधले बिखे बिख रते क्यों चल रहे, सानू पता ही कुछ नहीं, सोझी कुछ नहीं, ते जिन्नी कि साडी मत है उन्नी कि अनुसार असी विद्वान बन जाने। असी ते सतगुरु दे चरणां विच अरदास करिया करिए, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी, पल है तकृत करना पूर्ण दृष्टि तेरी, वाहिगुरु तेरी दृष्टि तेरी नजर बड़ी सवली है, तू साडे वर्गे अकिरत करना नूं वी पा पा, ते तू समर्थ वड्डा मेरी ते मत इन्नी, जिन्नी मनुख की मत है उन्नी कि मनुख गल कर जांदा। सो इस वास्ते श्लोक विच ते मैं तां करके थोड़ा जिहा मैं भरम भुलेखा दूर कर देवां, संगत नूं कई वार उलझण हो जांदी कि भाई साहिब जी श्लोक ही गलत गाई जांदे हन। हरिमंदर साहिब विच श्लोक गाउण दी मनाही है। मैं एक बार ये श्लोक पढ़न लग्या ते मैनूं पहला गल्लां ज्ञान नहीं आईयां। जगतार सिंह जी एडिशनल हैड ग्रंथी उन्होंने मेरे वल नूं देखिया, अरदासिया सिंह ने उस वेले कन्न खड़े कर लिया कि भाई साहिब नूं रोकणा है, ते मैं पहली पंक्ति गा दित्ती जिनी नाम ते आया गैम सकत काल। जो इन्नी गाई ते मेरे वाले वेखन लगे सारे, मैं क्या नानक ते मुख उजले होर पेती छुट्टी नाल सिंह साहब जी सिर मारे कहन लगे ठीक है गाओ। अरदासिया सिंह भी आंदे बैठ जाते हैं, कई बार कई भुलेखे पै जाते हैं। इस तरह एक बार मैं शब्द गाया सारे रखदा ऐसी होए पड़ी जानते दयार, हजे मैं शुरू किया ऐसी होए परी ते मैंने सिंह साहब जगतार सुना रोक दिता, कहने लगे नहीं ये नहीं गाउणा सारंग राग दा शब्द गाओ। मैं कहा सिंह साहब जी ये भी सारंग राग दा शब्द, कहने नहीं ये नहीं ठाकुर को सॉरी ठाकुर को शरणाई आई वो शब्द गा।
ਮੈਂ ਜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨੀ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵ ਯਕੀਨ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿਆ ਦਰਦਨਾ ਜਬ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਰਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਾਸ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੇਤ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਕੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ ਇੱਕ ਤੇ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਮਨ ਮੀ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹੱਤ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਦੋ ਭੇਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦਾਈ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲ ਸਕ ਜਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਵਾਚੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਲਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹਨ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।

गुरु प्यारी साहसा जी दुनिया का हाजिर ने बलवान कर अति सत्कार जो बहुत ही विद्वान की पाई हरजन सिंह जी जखमी साहब ओ हुण आप जी नूं कीर्तन राही निहाल करने जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बेनती है, एक बार सारे मन में समझाइए। आखिर मन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज समृत सतगुरु कृपा करके सब आखिर।

अग परे सं कहियन एते गावन हारे दूर क्यों जाओ। भारत विच संगीत दे जन्मदाते अवतार ने संत जन ने, भारत विच साजां दे जन्मदाते भी संत जन ने अवतारी पुरुष ने। हर अवतारी पुरुष नाल कोई ना कोई साज जुड़े होया और कोई ना कोई संगीत की खास धारा भी जुड़ी हो। खैर मैं लमकावां ना, परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे राहीं, जिस तरह मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द दे राहीं, अपने बोलना दे राहीं। बोल दस देंदे ने बंदा शांतमई है, बोल दस देंदे ने बंदा क्रोधी है, बोल दस देंदे ने धीरजवान है, बोल दस देंदे ने जल्दबाज है, बोल दस देंदे ने महाक्रोधी है, बोल दस देंदे ने महामोड़ है, बोल दस देंदे ने सियाणा है, सूझवान है। बोल बहुत कुछ दस देंदे ने। ता मरदे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो उनर ने हुफ्ता बाशद। परमात्मा अपने शब्द दे राही प्रगट है। ऐसा शब्द धर्म की साधना है, उसनों सुनना, और जो सुन लवे गुरु नाल जुड़ गए, बस इन्नी गल है। सो गुरु करो जे बहुर ना करना भगत कबीर, सो गुरु करो जे बहुर ना करना ऐसे मरो जे बहुर ना मरना। कहो कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाम विवेको। सारा ज्ञान सारा अनुभव उसे शब्द विच है, सिर्फ सुरत दा शब्द नाल जुड़ना है, अनुभव प्रकाश हो जाता है। मनुख ने सिर्फ गुरु तक पहुंचना है, परमात्मा तक नहीं ते ना पहुंच सकता है। शब्द ने परमात्मा दे लीन कर देना है। मनुख की मेहनत, मनुख की तपस्या, मनुख की साधना शब्द तक पहुंचना। अलापे शब्द नू, गावे शब्द नू। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते कहंदे ने, जिन्हां जिन्हां बोलां विच परमात्मा दे गुण झलकदे पैन, दया है, बैराग है, समदृष्टि है, प्रेम है, निर्वैरता है, निर्भयता है, ऐसे ऐसे शब्दां नू गाणा, परमात्मा दे गुणां नू अपने जीवन विच प्रगट करना है। और जो नहीं गांदा, साहिब कहिंदे ने, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत केन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मेन। तो मैं मुख्तसर करा, समाप्ति करा, क्योंकि गुरमुख प्यारे ने जथे ने एक शब्द भी पढ़ना। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे रहे, मनुख प्रगट आंदा है अपने शब्द दे रहे। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, और जो शब्द नू प्रगट कर देवे उसनू अवतार कह देंदे। गीता दे रहे परमात्मा दा ज्ञान प्रगट होया तो कृष्ण अवतार श्रेणी च आ गए। कुरान दे राहीं खुदा दा ज्ञान प्रगट होया, इन्हां बोलां दे राहीं वह आवाज प्रगट होई तो मुहम्मद साहब पैगंबर बन गए। अवतार श्रेणी च आ गए धन गुरु नानक देव जी महाराज। प्रभु दे बोल खसम दे बोल प्रगट होए। कदों प्रगट होंदे ने? जब मनुख का अपना मन चुप हो जाए तो परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। जिन्हों सुनाई देन लग पैन संत है, भगत है, पर जिड़ा सुन के प्रगट भी कर सके उन्हों अवतार कहंदे, उन्हों पैगंबर कहंदे, कोई अवतारी पुरुष। एक छोटी जी गाथा दे राही मैं इसनों स्पष्ट करके समाप्ति कर दें। जैसे हरनाकश के घर भगत प्रहलाद, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, कली धरती दे जिवें कमल का फुल पैदा हो गया। कली धरती दे हरनाकश दे घर इन्ना वड्डा भगत, इस तरह औरंगजेब दे घर जेबुल नसा पैदा हो गई सी, उहदी बच्ची बड़ी धार्मिक सी। जिस तरह दुष्ट हरनाकश का यह बच्चा ब्रह्मज्ञानी नहीं होया, इस तरह महान जालिम उस बादशाह की बच्ची बड़ी धार्मिक सी। शायद आपनों पता होवे इन्हें उपनिषदां दा तर्जमा जो है ट्रांसलेशन कीती सी, पर्शियन दे तर्जमा कीता सी, फारसी दे लिखे दे ग्रंथ मिलते ने लखनऊ म्यूजियम दे। और फिर इसने कुरान नू ढालिया संस्कृत दे, तुसी खुद अंदाजा लाओ, और कविता दे ढालिया नज़म दे, इन्ने विद्वान सी। ਇਹਦੇ ਵਿਦਿਆ ਭਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ।

जिन्नी देर तक दिल दी सफाई नहीं ओनी देर तक दूजे विच देखण दी गल छड्डो अपने जिस्म च नहीं दिसदा वी रब है कि नहीं, क्योंकि मलीनता सानू नजर नहीं आ।

आहे। एकश हर के नाम बिन बादे जमपुर जाहे। कबीर उजल पहरें कापरे पान सुपारी खाहे। एकश हर के नाम बिन बादे जमपुर जाहे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार। हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार। हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। भगत कबीर साहिब जी दे दो शलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। कल भी दो शलोकां दे अर्थ और विचार आप नाल सांझी कीती सी। एक बेनती मैं आरंभ च जरूर करांगा कि कथा विचार दे विच तीन गल्लां चेते रखनियां चाहीदियां। सब तो पहला है, मैं अक्सर कहने इत्थे पहली बारी अर्ज करांगा, पहला है सिद्धांत, दूजा है संवाद ते तीसरा शब्द है साखी। कथा विच ए तीन काम बहुत जरूरी ने जी। ए तीन बचन, सिद्धांत दा लफ्जी अर्थ हुंदा है जी, असी आम तौर ते शब्द वर्तने आ, ए साडा गुरमत दा सिद्धांत नहीं, ए साडा सिद्धांत नहीं। इतों तक के लोकां ने अपनियां जथेबंदियां दे सिद्धांत बनाए ने, अपने मुल्कां दे सिद्धांत बनाए ने कानून दे। उंज वैसे सिद्धांत दा लफ्जी अर्थ हुंदा है अंत सिद्ध कीती कोई बात। सिद्धांत मतलब कि जेड़ी गल अंत सिद्ध कर दिती, इयों कह लो जिस गल दा निचोड़ कढ के रख दिता भी तत आ जे। जिवें क्योंकि कई बार जो असीं साखी करने आ कईयां दे मन च जरूर ख्याल उठदे होणगे जी हुण इतिहास शुरू हो गया, क्योंकि तीन गल्लां जरूरी ने। सानू कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे पुछे ते जे कोई ए पुछे भी सानू सिखी दा सिद्धांत की है, ते आपां ए तीन गल्लां करने हुंने आ कि साडा सिद्धांत है किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। इहदा मतलब गुरु नानक साहिब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक ए सिद्धांत निचोड़ कढ के रख दिता तीन गल्लां च कि धर्म दी किरत करो, परमेश्वर दे नाम नूं जपो, किरत वचो भी वंड के छको, ते जेड़ी परमात्मा दी कीर्ति आपां करने आ उस बाणी नूं भी अगे वंडो। ए होया साडा सिद्धांत। मान लो कई बार कोई शब्द पुछदा सी, शब्द वरतने कोर कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नदेड़ दी धरती ते चोला त्यागन तो पहला जदो गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरियाई दित्ती ते की सिद्धांत दिता, फिर असीं तीन गल्लां करने आ जी। महाराज जी ने कहा पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। उह सारियां बातां दा निचोड़ कढ दिता। मेरी अर्ज है सिद्धांत का अर्थ है अंत सिद्ध कीती हुई गल जो तत्क है।

0: साखी है, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਏ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਣਕਾ ਜਪ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਸ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲੋ ਬਰਨੂ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਭਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ ਸੰਵਾਦ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ, ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ 6 ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਸਕਾਂ। ਕੱਲ ਸਲੋਕ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਝੰਖ ਨਾ ਝੰਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੰਖ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੱਖ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਝੰਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਝੰਖ ਕਹਿ ਲਓ ਝੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਵਾਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਝੰਖ ਨਾ ਝੰਖੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਝੱਖ ਨਾ ਮਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਬਕਵਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਭੈੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲ। ਕਿਉਂ? ਤੁਮਰੋ ਕਹਿੋ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭੈੜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਾਂਬੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ एक बस्त कारण बेखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी गिर ले तो मूढ़ा कहो कहां करे भी ते चाखे ना। भी इना कोई दे दिता एक वस्तु नहीं दिती ते बंदा ओदे वास्ते परमात्मा नू उलामे फजूल बोलदा पे है। ते महाराज कहिंदे जिहड़ा शुकर करन वाला है ओ तां इको गल कहिंदा है कि जिस की वस्त तिस आग्या रख है, प्रभ की आग्या मन है मत। वेखो शुकराना, कल मैं एक तुक बोली सी, मैं अज फिर रिपीट कर लगा वा, मैं जान बुझ के कथा दोहरा रहा जी कि आप कादे वास्ते आए इत्थे तीन दिन लई। कल मैं अर्ज की सी जेड़ा बंदा सबर वाला होवेगा ना जी, सबर वाला, वो बंदा शुकराने वाला होवेगा। जिन्ना बंदा अंदरों कपटी ते कूड़ा होवेगा उन्ना नशुकरा होवेगा। सबर वाला बंदा बंदियां दा शुकराना भी करदा है। कई बार आप कहने ना जी कोई बंदा मदद करदा है जां साडी किते दुख वेले बांह फड़दा है, इनू दुनियावी बंदे दी पूजा ना समझो। जेड़ा बंदा दिस दे होए वजूद दी शुकराना नहीं कर सकदा, प्यारियो उन्हें अन दिस दे दा शुकराना कदों करना। जेड़ा दिस रहा है, जिन्हें अखा न जिन्हें हथा ना सब कुछ दिता है, मैं कहांगा देन वाला दाता है, फिर भी जिस बंदे ने पारोपकार किया, जे बंदा ओदे पारोपकार नूं भुला के भी ओदे लई निंदिया करदा पिया, मेरा ख्याल वो बंदा कदी धर्मी नहीं हो सकदा। जिहड़ा दस दिस दे होए दा शुकर नहीं करदा, अन दिस दा शुकर किने करना। मैं फिर अर्ज करा कि शुकराना करने वाला जिहड़ा है, कल मैं भाई साहब जी दी इक तुक पढ़ी सी, इहनूं नोट कर लिया जी, शुकराना है सच घर झख नहीं ओ मारदा। जेड़ा सच भी जुड़िया सबर भी जुड़िया, सबर वाले ही शुकराना कर दे, क्योंकि त्रिशना वाले कदी शुकराना नहीं कर सकते। त्रिशना ते ओ भांडा है जिदा तला कोई नहीं, जिस बाल्टी दा तला है ओ ही भर के कहिंदी सबर मैं भरी गई हां, जिस बाल्टी दा थले तला ही कोई नहीं उन्हें कदी भरी जाना। सबर वाला शुकराना करदा, कपटी बंदा शुकराना नहीं करदा। भाई साहब जी ने लिखा, भाई गुरदास साहब जी ने, शुकराना कह सच कर कूड़ कुफर कर ना साबूरी। ये फिर तुक सुनो, कूड़ कुफर जेड़ा झूठा है कपटी है ओदे घर विच शुकराना नहीं ना साबूरी, दा अर्थ ओदे घर विच बिलकुल सबर नहीं। एक होर गल, कई बारी झक मारन वाला बंदा, मैं हुण अर्थ कर रहा जो परमात्मा दिता ओदे लई फजूल बोली जा रहे, तू मेनू की दिता है। मैं फिर अर्ज करांगा कि चाख मारन वाला बंदा सब कुछ प्राप्त करके भी गंदे टोबे की तरह छप्पड़ की तरह बदबोई छड़दा, सबर विच जीण वाला कखां दी कुल्ली विच रह के भी दरिया की तरह जिंदगी जींदा है। भाई साहब ये बाबा फरीद जी का एक श्लोक है, फरीदा सबर एहो सवाओ तेरी जिंदगी का जिहड़ा मनोरथ है वह सबर होवे, सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, जे तू ए दृढ़ कर लें सबर नू। सबर दा अर्थ आलस नहीं, महाराज कह रहे ने सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थीवें दरियाओ टुट ना थीवें वाहड़ा। जे तू सबर च रहेगा ते दरिया दी तरह विशाल बन जाएगा, ते जे प्यारिया तू केवल त्रिशना अधीन कूट कपट रहा सच एवे तू एक गंदे नाले दी तरह तेरी जिंदगी बन जाएगी। मैं तां कल कहा सी रब सामने फजूल ना बोलिए, इसे करके गुरुदेव ने कहा जेड़े नशुकरे ने वो दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बेखोट गवावे, एक पी ना दे दस पीर ले तो मूढ़ा कहो कहां करे। ते जेड़ा शुकर करदा है ना वो असी तुक पढ़ी है, जिसकी वस्त तिस आग्या रख है, प्रभ की आग्या मन है मत है। शुकराने करन वाले नूं तां रब जी कहिंदे आ कि जिहड़ा शुकर जींदा है ना उन्हूं कई गुणा वध भाग लगदा है। प्रभ की आग्या मन है मत है, महाराज कहिंदे उस ते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। उह सदा दयालू ने कल अर्ज कीती सी, महाराज कहिंदे झख ना मार किसे दा बुरा ना सोच। मैं सच्ची कहिना मैं सोचना क्या हुण शब्द बोलना नहीं क्या, जेड़ा बंदा सिर्फ किसे दे बुरे दे ख्याल ही पैदा करदा है ना, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे भावें दस सुखमनी साहिब दे पाठ करे दा मन कोई नहीं टिकना। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। मेरी अर्ज है किसे प्रति क्यों झख मारीए, तुम रो कहो ना हो तेरे क्या थोड़ा हो जाने। जे तेरे वास साडे पंजाब च गल कहिंदे सन कावां दे आखे कदी ढोर थोड़ा मरदे हुंदे, क्योंकि कां हड्डो रोड़ी च मास खांदे जे कां कहर सारे पिंड दियां मझां मर जन गियां नहीं कावां दे कहन ते ढोर नहीं मरदे हुंदे किसी दे बुराई करन दे नाल कोई बुरा नहीं हुंदा ते महाराज कह रहे ने जो करते पुरख ने करन कर्म करीम जो कर रहे मेट ना सका कोई उन्हूं कोई नहीं मेट सकता। उस तो अगला एक सलोक असी पढ़िया सी कबीर कसौटी राम की एक कदी कदी लगदी किसे किसे नूं कसौटी दे कल अर्थ आपां कीते सन वैसे उंज साडे टीकाकारां ने अर्थ कसौटी दे कीते आ परख कल मैं अर्ज कीती सी जी ये दोनों शब्द संस्कृत विचों ने एक शब्द है कश कश दा लफ्ज ही आपां ओही पढ़ना जो लिखिया कसौटी पढ़ना कश दा अर्थ है रगड़ना ते वट्टी दा अर्थ हुंदा पत्थर कसौटी दा अर्थ हुंदा है कि काले रंग दे पत्थर ते जिथे सोना रगड़िया जांदा है पित्तल रगड़िया जांदा है इउं कह लो सोने दी धात सच खरी है कि सोना झूठा है ओदे उनू परखण वास्ते कसवट्टी हुंदी है कश दा अर्थ मैं कीता रगड़ना ते वट्टी दा अर्थ पत्थर इह सीधा शब्द बना दिता कसौटी दा अर्थ सीधा अर्थ बन गया परख जदों परमात्मा परख दी कसौटी लांदा है गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई उस कसवट्टी ते झूठा बंदा नहीं टिक सकदा ओदे पैर ही कोई नहीं राम कसौटी सो सह परमात्मा दी कसवट्टी रब दी कसवट्टी गुरु दी कसवट्टी सिर्फ ओही सह सकदा केड़ा जी जो मर जीवा होए जिन्ने जिउंदे जी अपने आप नू मार दिता अपनी खौमे नू मिटा दिता ते कल असीं भाई मंझ दा जिक्र कीता कल गुरु गोबिंद सिंह जी दे पवित्र जीवन ते बचना दा जिक्र कीता क्योंकि जो कसौटी लगती है ना गल्लां वाले भी कई बार डिग पैंदे आ जी मैं एक निक्की जी उदाहरण होर देना सतगुरु दमदमा साहिब गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उथे भाई डल्ला चौधरी इलाके का उन्हें अमृत छकिया जी भाई डल्ला सिंह जी बन गए उन्होंने घर हजूर दे निशानियां बस्तर पे ने सतगुरां दे शस्त्र पे ने सतगुरां दे पर एक गल वार वार कह रहा सी क्योंकि उहदे कोल अपनी फौज सी उहदे कोल हथियार सन ते उह वार वार कह रहा सी महाराज जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 40 ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪਰਖਾਂਗੇ ਕਸੌਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਵਰਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੜ ਪਕੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਢਣ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਸਮ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਿਆਲ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਮ ਤਨ ਦਿਸਦਾ ਮਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੌਟ ਕਹਿ ਲਓ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਲਓ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾ ਡੱਲਿਆ ਉਹ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪਹਿਰੇ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ कबीर जी ए फुरमा रहे ने उजल दा अर्थ हो गया सफेद चिट्टे साफ कपड़े पाने मिट्टी दा जर्रा भी ना लगा हुए ते महाराज कहने कपड़े पांदे ने साफ कबीर जी उजल पहरे कापरे पहरे दा अर्थ पाना ते कापरे दा अर्थ आपा पंजाबी च कपड़े ही करना है क्योंकि आप जी नूं पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच मौज दिन भी कहा सी भी तुसी सतगुरां ने जिस ढंग नाल बाणी उचारण कीती है ओहदा छेड़छाड़ कोई ना करे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बोली है 1170 तो लैके ते 1675 तक दी बोलियां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच क्योंकि भगत जयदेव जी 1170 नूं उहनां दा जन्म होया भावें बाणी उहनां बाद च उचारण कीती हुण असी पंजाबी शब्दां करने आ उह झगड़ा हो गया कबीर जी राड़ा नहीं बोलदे रारा बोलदे झगड़ा एक नबेरो राम आपा कहने झगड़ा नबेड़ दियो भाई महाराज उत्थे राड़े दी थां रारा बोलिया जा रहे सतगुरां ने उस तरह लिखिया है इत्थे मेरी बेनती कापरे इहदा अर्थ है कपड़े जिन्हों पंजाबी च आपा कपड़े कहने बस्तर कह लो कबीर उजल पहरे कापरे जेड़े बंदे चिट्टे कपड़े पांदे आ साफ सुथरे कपड़े पांदे आ कादे वास्ते तन ढकन लई लोकां नूं दिखाउण वास्ते कपड़े पांदे आ बड़े कीमती कि लोकां विच असीं खिच दा केंद्र बणीए सच इह इस दुनिया च लोक अपने वास्ते कोई नहीं जे जिंदे लोकां वास्ते जिंदे आ साडा कपड़ा भी लोक वेखण साडे गहने भी लोक वेखण साडी गड्डी भी लोक वेखण साडा हार शिंगार भी लोक वेखण सच इह बंदा अपने वास्ते कोई टावा टावा जिंदा इत्थे बंदा दुनिया वास्ते जिंदा भगत कबीर साहब ने एक शब्द वरत्या ओ है शब्द है नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी कहने नक भी वढ़ दिता ते कन भी वढ़ता क्यों अर्थ किते सने इत्थे नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोकी प्यारी चलो साखी कारा ने माया दी इस्त्री रूप बना दिता इस्त्री रूप हुई उन्हें नक भी कटदा कन भी कटदा गल ये नहीं जे उन्होंने ये शब्द इस्त्री लिंग च वरत्या है इहदा अर्थ है साडी ओ अंदर दी सुरती बिरती जिहड़ी करतार तो तोड़ के बाहर मुखी करदी है ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੱਕ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਨੱਕ ਨਬੂਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਏਵੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਿੰਦਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚਲੋ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਨੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪਹਿਰੇ ਕਾਪਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਨ ਹੈ ਸੁਪਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਕਾਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚ ਚੱਲਦੀ ਬੜੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣੇ ਤੇਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਦੇ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਹੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ਬਟਾ ਫੂ ਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ थोड़ा जाओ असि गुरु ग्रंथ साहिब चो दर्शन करने सारे बचन दे। मनुखी सुभाव में क्या चीजां तां सिर्फ तन ढकण वास्ते ने, असि मनुख सभ्याचार च रहिंदा जानवरां नूं काड़े वास्ते विच असि तन ढकण वास्ते वस्त्र पहनने ने, असि जीण वास्ते खाणा है। पर जदो इंसान ऐशो इशरत विच फै जांदा, अज मैं दोनों पक्ष रखने ने कि कपड़े नहीं चंगे पानी चाहिए, कि बंदे नूं खुराक चंगी नहीं खानी चाहीदी, इह खंडन क्यों कीता गया है। बस एक नुकता याद रखियो, जिथे परमेश्वर दा नाम भुल जाए अपनी खौमे ही हर थां ते मैं बोले, उथे भावें कपड़ा होवे ते भावें भोजन होवे सतगुरु नूं स्वीकार नहीं करदे। नाम तो बिना कहिंदे ने खुआर है। एक महाराज जी दा सलोक है जी, आपां हुण बाणी पढ़ांगे। उह सलोक है, सौ उलामे दिन के राती मिल सहंस, सिपत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। गुरमुखो फिर मैं बेनती करांगा, पाठ जरूर गुरु ग्रंथ साहिब दा करिया करो प्लीज। मेरी खत जोड़ के बेनती है कि ठीक है, असि बहुत गल्लां करनी हैं बाकी सारिया। किन्ने क सज्जन ने जेड़े रोज पांच सात अंग गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करते। हां बहुत, मैं सच्ची कहांगा, गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ असी प्रचारक बाद चा, कीर्तनीय बाद चा, प्रबंधक बाद चा, नेता बाद चा, सब तो पहला आपा सिख हां। ते रहत मर्यादा च लिखा सिख दा फर्ज बनता अपना साधारण पाठ जारी रखे। उत्ते साधारण शब्द वरते जी, चलो मैं सहज पाठ वरत लिया। फिर उहदे विच इह रस हुंदा है, बाणी दी व्याख्या बाणी करदी है। भगत जी ने शब्द वरते है कि जिहड़ा विखावा करदे ने, सौ उलामे दिन कह परमात्मा नूं भलान दे, उन्हां बंदियां नूं सौ उलांभे मिलदे आ। राती मिलन सहंस, सारी रात विषय वासना च गवा दित्ती, उहदे हजारां उलांभे मिलदे आ। अगे कहिंदे सिपत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। सुणियो ध्यान नाल, करंग दा लफ़्ज़ी अर्थ हुंदा है पिंजर। इत्थे इक शब्द वरत्या हंस, हंस कदी पिंजर नाल नहीं जुड़दा हुंदा। क्या कमाल दा वचन कीता जी गुरु नानक साहिब जी ने। महाराज कहिंदे सौ उलामे दिन दे ने रब भुलन दे, हजारा रात दे ने ओ कमलिया बंदिया, तू हंस सैं। हंस दा काम है मोती चुनना, हंस दा काम है दुध ते पानी वाक करके दुध नू खा लैंदा सी फुटियां, हंस दा काम है के डूंगे पानी नू तर जाना, हंस दा काम है दरिया दियां लहरां नू चीर के निकल जाना। कमलिया बनाया तेनू हंस सी, ते तू आ चमड़ी दा पिंजर इहनू खाई जाना। एदे विच तू खचत हो गया, मतलब तू वासना च प्रवृत्त, तू हंस नहीं रहा। जिहड़ा हंसी करंग चूंडन लग पे उहनू हंस कहांगे जी आपां, उहनू गिरज तां कहा जा सकदा। इत्थे हंस दे लफ़्ज़ी अर्थ मैं आत्मा नहीं कर रहा, हालां गुरबाणी च इह हंस दा अर्थ सिख भी है, हंस दा अर्थ आत्मा भी है। इत्थे हंस दा अर्थ करांगा उह हंस बिरती जिहदी खुराक जमांदरू मोती सी। तू शब्द दा मोती चुनना सी होए, तू बंदगी दा मोती खाणा सी, तू सतगुरां दे बचन दे मोती खाने सन, पर बनाया तेनू हंस सी निकम्मिया। तू इन्ना क जीव दे चस्के चला गया, तू मास चमड़ी दा, इहदा मतलब तू शरीर दी वासना नू खाई जा रहा। फिर अर्ज है सौ उलामे दिन कै राती मिलन सहंस, सिबत सलान छड़ कै करंगी लगा हंस। अगली गल ध्यान ना सुनियो, बंदा खा के कहिंदा वी कमाल करती, इन्ना कुछ छकिया। महाराज कहिंदे फिट अवेहा जीविया। मैं अजकल हर गुरुद्वारे कहना, मैनू कहिंदे वी तुसीं क्यों अजकल कहिंदे हो, मैं कहिना सच्ची जे अद्धे यादे लोग जीव दी खातर लंगर चाहुंदे आ ते उह गुस्सा वी कर जांदे आ। ते मैं उस दिन सनोजे किते कहा सी, इह मोटी को नहीं हुंदी जिहड़ा अंदर भड़ोला है बनी जांदा बंदे दा। इह गुरु साहिब ने बाणी च कहा कि बंदिया तू आ जीव दे चस्के दी खातर फिट अवेहा जीविया, जित खाए वधाया पेट। नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन खेत, नाम तो बिना जेडे तेनू प्यार करदे ने ओह भी तेरे दुश्मन बन जाणगे। इहदा अर्थ आपां कर रहे हां, चिट्टे कपड़े पा रहे हैं, पान सुपारियां खांदा पिया जी। महाराज जी ने कहा इह कोई चंगी गल नहीं, खंस जेड़ा ओह कुरंग इह पिंजर चूंडदा पिया है। एक बचन होर आपां लांगे, इह वैसे साडा इतिहास कहिंदा है कि जदों औरंगजेब बादशाह बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं मिलन आया, क्योंकि अज दे आधुनिक विद्वान कहिंदे ने जी इह नहीं सी जी मारे, नहीं सतगुरां ने जी कहा नहीं, मलेश को दर्शन देना ते नहीं दिता। ते उस दिन मैं एक अर्ज होर कीती सी, मैं फिर इत्थे रिपीट कर लगा कथा परसों वाली, दिल्ली विच पीरी दे सिद्धांत की व्याख्या हुई सी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने की, क्योंकि असि मीरी पीरी शब्द वरतने जेड़ा बादशाह है ओदे मतहत किन्ने राजे हुंदे ने जी, राजपूत भी सन, पहाड़ी भी सन, मुसलमान भी सन, ते जेड़ा शहनशाह है ओदे थले जेड़े राजे ने उस राजे नू उस समय दसना पैंदा सी मेरी मौत तो बाद मेरा जानशीन कौन होवेगा, राजे नू दसना पैणा, ओ उनू राजा जिउंदे जी दसदा मेरे तो बाद इह जानशीन होवेगा, ते जे उस नू गद्दी ना मिले ते फिर बादशाह अपनी ताकत दी वरतों करके उनू गद्दी दवांदा सी। बस राम राय ते पृथ्वी आए इसी भुलेखे च रह गए। जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने गुरियाई दित्ती उदन राम राय दिल्ली सी, औरंगजेब तक ओदी सांझ है, चलो सरकारे दरबारे ओदी चलदी है, उन्हें पूरा जोर लाया भी मैं वड्डा भरा हां, गद्दी दा हक मेरा बनदा है, जे पिता जी ने दित्ती नहीं ए जान लगे ने मेनू गद्दी दवाओ। पर गुरु हरकृष्ण साहब ने औरंगजेब तां की सके भरा नू मत्थे नहीं लाया, राम राय नू मत्थे नहीं लाया। उन्हें एक गल होर कही कि इस गद्दी दे फैसले बादशाह नहीं करदा, क्योंकि ए रूहानियत दी जेड़ी गुरियाई है ए किसे बादशाह दी दित्ती कोई नहीं, ए धुर दरगाह तो आई है, जिस दे नाम दी है उन्हें मिलेगी। याद रखो बादशाह नाल अप्रोच करके पूरा जोर लाया जा रहा है, पर 8 साल दे सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब अपनी रसना तो बोल रहे बाबा जे बसे ग्राम बकाले बन गुरु संगत सकल संभाले। याद रखो इस गुरियाई च कोई बादशाह दखल नहीं दे सकता। पर मैं बेनती करा क्या जाता है तवारी गुरु खालसा तकरीबन सारे विद्वाना ने मैकालप ने भी इस शब्द का जिक्र किया है, वह कहते हैं औरंगजेब ने कहा जे नहीं मिलना मेरा राज भाग है। आखिर बादशाह जी मेरे वास्ते कोई शब्द कहो, तो सतगुरां ने जिहड़ा शब्द कहा वह गुरु ग्रंथ साहिब च गुरु नानक साहब का शलोक है, पर अर्थ आपां इह अर्थां तो दूर नहीं जाना। कबीर उजल पैरे कापरे, महाराज कहिंदे क्या खाधा है क्या पैदा होए, की खाना ते की पाना जामन नाही सच्चा सोए। वाहगुरु तू इन्ना कुछ परोस के खा रहे हैं, तू इन्ने तन ते कीमती वस्त्र पा रहे हैं, कादा तेरा खाना ते कादा तेरा पाना, जिस देण वाले परमात्मा दा नाम ही तेरे मन विच नहीं। क्या खाधा है क्या पैदा होए जामन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मुठा मिठा, क्या मैदा क्या मांस, देखो सारे पदार्थ कह देते। कादा तू गुड़ खा रहे हैं, मेवा खा रहे हैं, मैदे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, क्या खाधा क्या पैदा होए जामन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या केसे सुखाली, की जै भोग विलास, कादे तू इन्ने कपड़े रोज खरीद खरीद के पाना पे, कादे तू रोज नवे तो नवे अपने बेड दिया चादरा बदलना पे पलंग दिया। वेखो मुद्दत पहला गुरदेव बाणी च कह गए क्या कपड़ क्या सेस सुखाली की जै भोग बिलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, का दिया तेरिया फौजा, का दे तेरे सिर ते चौर करन वाले तेरे अगे जेड़े चौर बरदार ने, क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास, बहुत कोई तू कठा कीता पर चेते रखी, नानक सच्चे नाम बिन सबो टोल विनाश, एक नाम तो बिना खाना पाना जो कुछ भी है सब ही विनाश हो जाना, एदा तेरे रूहानियत नाल कोई संबंध नहीं। हुण इस तो अगे 2-3 बचन मैं होर बाणी चो करने हैं जी। एक जैतसरी की वार च पौड़ी है सतगुरां दी, मेरा ख्याल उच कोई सुख नहीं जिहड़ा बंदे दा जिक्र नहीं कीता महाराज जी ने वह पौड़ी च। मैं सिर्फ अज बेनती कर रहा खा लेना ते पा लेना कि बंदा इहदी आखरी मंजिल ही जी, हौमे च लोक विखावा कर देंगे इथों तक। तो महाराज क्या है ये अज पगां दे भी स्टाइल हुंदे ना जी, पानी च इक तोक आउंदी है टेढ़ी पगरी टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे भीरे खान, भाओ भगत सो कामना कुछ का भाओ भगत सो कामना किछ है मेरो काम दीवान। ये 2 तुकां दे अर्थ सुनियो, टेढ़ी पाग मतलब विखावे ली, उंज दस्तार सोहनी तो सोहनी सजानी चाहीदी है, पर किसे चीज नू खौमे नाल जोड़ के नहीं वेखना, मेरी बेनती है। ते जे मैं इस करके पग दा बन रहा सोहनी ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਹਿਲਾ ਰੂਹ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਪੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਟੇਢੀ ਪਾਗ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਗ ਟੇਢੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਟੇਢੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁੱਠੇ ਚੱਲਦਾ। ਟੇਢੀ ਪਾਗ, ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ ਖਾਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਬੀਰੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਬੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੀਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀੜਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਨ ਸਫਾਰੀ ਕਹਿ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਟੇਢੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਾਨ ਦੇ ਬੀੜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਨ ਚਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਲਿਆ ਬੰਦਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੋਕੇ ਭਾਓ ਭਗਤ ਸੋ ਕਾਮ ਨਾ ਕਛਵੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁੱਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁਸਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁੱਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਚ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ, ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ ਵਿਸੂਰੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਭਾਲਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੋ ਬਚਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਸੋਹਾ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ, ਸੁਰਖ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ, ਸਫੇਦੀ ਸਤ ਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ, तू जे चमड़ी उत्ते चाहना मेनू लाल रंग सुरख रंग मेनू पसंद कह, वह भले बंदे बाहरों लाल कपड़े पाण वाले अपने मन नू भी लाल रंग दे विच रंग लै, सची मुची पता लगेगा तेरा लाल रंग ए व्याख्या करेगा। जिन्हें बंदे ने लाल सुर कपड़ा पाया ए अंदरों भी लाल होया पे है। जिन्हू बाबा जी ने कहा ना मैला ना धुंधला ना भगवान ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। रत्ता पहनन मन रत्ता, जे तू सुरख रंग पाना पसंद करना है ते शब्द की कमाई इनी कर के तेरा मन रंगिया जाए, परमात्मा मेर करे तेन चेहरे ते कोई रंग लान की लोड़ ना पे, तेरे चेहरे की लाली दसे अंदरों रंगिया होया है। रत्ता पहनन मन रत्ता। हुण अगला जी सफेदी, आपां वैसे शब्द सफेद वरतने ना जी, उत्थे पप्पे नाल लिखिया मारे ने, आपां वी पढ़ना बदलना नहीं। सफेदी, जे तू चिट्टे कपड़े पसंद करना, उज्जल पहरे कपड़े चिट्टे कपड़े पसंद करना। सतदान, उंज वैसे कई विद्वाना ने सत दा अर्थ भी दान किया, सत दान दा अर्थ सच्चे शब्द का दान कर, ये तेरी चिट्टी पोशाक बन जाएगी सच शब्द का। क्योंकि फिजिक्स भी कहती है ना जी, चिट्टा रंग जो जजब नहीं करता, चिट्टा रंग जो छड़ता है, काला रंग जजब करता है चिट्टा नहीं करता। यही कारण सुलह कुल जिहड़ा रंग है वह चिट्टा रंग है। मैं पिछले दिन भी कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे पवित्र खत विच जिहड़ा बाघ बाज है वह श्वेत बाघ है, वह चिट्टा बाज है। ये मीरी ते पीरी की व्याख्या है, क्योंकि बाज जिहड़ा है वह सपाही की व्याख्या करता है, ते चिट्टा रंग जिहड़ा है वह सुलह कुल ते कुरबानी की व्याख्या करता है। चिट्टा रंग जिहड़ा है वह अपने आप च कुछ नहीं जज्ब करता, वह वंडदा ही वंडदा है। महाराज कहिंदे जी चिट्टा रंग पाई बैठा ते लोकां सारिआं दे पैसे अपने ना लवाई जांदा, तू चिट्टे कपड़े ला काले पाया कर, तू तां सब कुछ खा गया। चिट्टा रंग जिहड़ा दान कर रहा है। रत्ता पहनन मन रत्ता सफेदी सतदान। अगे जी नीली, इह ते थोड़ा जिहा विश्राम दे दी, अर्थ सौखे हो जाणगे। नीली, कई बंदे नीले कपड़े बहुत पसंद करदे आ जी, नीला बाणा साडे निहंग सिंह पाउंदे आ, सिंह पाउंदे आ, बड़ी चंगी गल है। नीली स्याही कदा करनी, इत्थे स्याही दा अर्थ है कालख, जेड़ी कई जन्मां दी अंदर कालख दियां परतां पईयां ने, जितन अंदर मन दी कालख रग के बाहर कर देंगा तेरे नीले रंग दा चोला प्रवान हो जाएगा। देखो आ व्याख्या रूहानी है, जे तू पाना है रत्ता पहनन मन रत्ता सफेदी सतदान। नीली स्याही कदा, कदा करनी दर्थ कटना, नीली स्याही कदा करनी। हुण अगला जी पहरन, पैर ध्यान, पैराहन शब्द है जी, उंज इत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या पैरन। पैरन दा अर्थ है कि जेड़े सिंह चोगा पसंद करदे आ, इह गुरु नानक साहिब दे चोगा चोला प्यारिया, चोला सिरे मोढ़ियां तो लैके पैरां तक जांदा है, तू सिर तो लैके पैरां तक जिदन नाम दे ध्यान च जुड़ गया चोला बन जाएगा। देखो ये रूहानी व्याख्या है, जदों असीं इह चीजां नूं गुरबाणी च लभांगे साडा मन गुरु वाले पासे तुरेगा। रत्ता पहनन मन रत्ता सफेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर तिहान। खालसा जी आप जी कमर कस्से बनते हो, कमर कस्सा इस करके भी कई बनिया जाता है बंदे का मोटापा काबू आ जाए। हाँ जी अक्सर अजकल बेल्टा भी देंदे ना, पुराने समय कमर कस्सा ए बंदा शरीर ठीक रहे। इत्थे महाराज जी ने कहा जे बाहरों कमर कस्सा बनीए ते ए मोटापा घटन तो हट जाता है, ते जे संतोख दा कमर कस्सा बन लेंगा ते लालच दा मोटापा घट जाएगा। कमर बंद संतोख आ पोशाक बा, तू सबर दा कमर कस्सा कर, तन जोबन तेरा नाम हे वाहगुरु जी। लोकी पैसे ते जवानी पिछे खान ते पान पिछे जिंदगी कर दिंदे आ, मेरे वास्ते जवानी ते पैसा तेरा नाम है। जे नाम आ गया चेते बुढ़े भी जवान आ, जे नाम चेते नहीं आए जवान भी बुढ़े हो गए। देखो किड्डे प्यारे शब्द के, रत्ता पहनन मन रत्ता सफेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, धन जोबर तेरा नाम। बाबा जी जे नाम भुला के सी कपड़े पाइए, कहन लगे बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जे खुश ना पाने खुआरी पैदा कर। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैद तन पीड़िए मन में चले, विकार कबीर उज्जल पहरे कापरे पान सुपारी खाए। हुण अगली गल थोड़ी जी खान ते जी, मैं किसे दा कोई विरोध नहीं करदा, साडे जम जम के जिन्ना मर्जी वेखो अजकल किसी नूं कहण दी हज भी कोई नहीं, हर बंदा आजाद है जी इस मुल्क च। पर फिर भी मेरी बेनती है कि लंगरां वल ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, माड़ा बंदा तो गुरुद्वारे लंगर नहीं करा सकता, लालू कित्थे लंगर कराऊगा जी इत्थे। इकले आप जी दी तो कहानी नहीं, मैं उदन कहा सी तुसी पंजाब च जिहड़ा याद रखियो, ट्राली जांदी हुंदी सी पिंडों हरिमंदर साहिब नूं जां आनंदपुर साहिब मेले ते जां सरहंद मेले ते, ते सड़क दे उत्ते टाट भी नहीं सन विछाए हुंदे, लोह वाले प्रशादे ते धूड़ा उत्ते जमया हुंदा सी। ओ प्रशादा उत्ते रख के जदों मां छोलियां दी दाल पांदे सन ना जी, तुसी जिन्ने मर्जी इकट्ठे कर लो उहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकदा। क्यों? क्योंकि उस बनाण वाले विच बनावट नहीं सी, वह जरा बना रहा से सीने च गुरु से। अज साडे मन की गंदी बिरती का कारण भी खाणा है, क्योंकि जिहो जिहा आपां अन्न खाने अन्न दे तीन हिस्से हुंदे आ, एक अन्न का हिस्सा हुंदा जिहड़ा साडा फिजिकल जिहड़ी ताकत दिंदा जी, इह चों कैल्शियम मिल गया, विटामिन मिल गए, आयरन मिल गया कि नहीं। दूजा मन का हिस्सा हुंदा जिहड़ा बॉडी नूं नहीं चाहीदा मल बन जांदा। तीजा सूक्ष्म हिस्सा हुंदा, कितों भी अन्न खाओ, तुसीं बाहरों खाओ घरों खाओ, पहला अन्न का हिस्सा जिन्हें ताकत देनी है, दूजा अन्न का हिस्सा जो फालतू बॉडी खारज कर देती है, तीजा सब तो सूक्ष्म हिस्सा है ख्याल। ए शब्द निकलिया है जैसा अन्न तैसा मन, जरा शब्द ना ए जरा भी ए छोटा अन्न करें पखंड, ओदी आरंभता कहिंदिया अन्न देवता है, अन्न बहुत बहुत कीमती है। ते तुसी देखो आपा किन्ना गारबेज करने हैं जी, सिर्फ जीव दे चस्के लिए ना, इत्थों छकिया उत्थों प्लेट चुकी दूजे सां सट दित्ती, उत्थों वेख्या ते नाल लोक कहिंदे चलो टेस्ट कर लिए, नहीं प्यारे हो बहुत चंगा होवे। हुण अगा मैं अन्न बारे बोलन लगा, इह भी बाबा जी दा वचन है जी। हुण अगले महाराज कहिंदे आ सब रस मिठे मन्ने है, मैं हुण दूजे अर्थ कर लगा, मैं नैगेटिव नहीं हुण कर रहा भी पान सफारी खाए, क्योंकि जे मैं बोली जाऊंगा मन च आएगा भी ये कि नैगेटिव जी गल्लां हो रही हैं। हुण दूजा पक्ष है सब रस मिठा मन्ने है, तू मिठास नूं पसंद करना। जिदन तू सतगुरु दे बचन नूं जिंदगी च मन जाएगा ना, चेते रखिए दे वर्गी मिठास दुनिया च कोई भी नहीं। इसे करके हालांकि मिठे का संबंध जीव नाल है, ते गुरु ग्रंथ साहिब च भाणे का संबंध भी मिठे नाल है। आपां एक शब्द आम वरते हैं कि रब दा भाणा मिठा करके मन्ना, महाराज कहिंदे सब रस मिठा मन्निए, उदन सारे मिठे वेच आ जाएंगे, तेरी जलेबी, तेरे गुलाब जामुन, तेरी मिठाई, बर्फी, सब कुछ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी, ए तुर की बाणी, दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए, हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया है। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया है, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे घर तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अब खत मुख देवै काटे जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है आख्या हर हर नाम अब खत मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसि जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: तो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा, ठाकुर
0: कीजे सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रमीठा,
0: सर्व सुखता हु मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह ले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागे रखे,
0: रोकी आज्ञा मन ने मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सरपर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दिस सो चालन हार,
0: लपटर होत अंधा धार,
1: घटाऊ स्यों जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पात्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत विकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: मिथि साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह होत सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुख आवतता कह दुर्गंध,
1: फिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाय,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपण के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेज अन दे कट बस्यो हर नाऊ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत,
1: जन नहार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक उन जन चरण पराता,
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आपे आप आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप सियानप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावै तिस लये लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जपना।

वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू, वाहेगुरू।

गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगु

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे बिडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल लगे पराणी विस्माद संजोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद दिखे हाजरा हजूर।

मूर पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा वह जितना जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घटना कोई।

पूरे नाद उन्हां पे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोर करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिका तिर तो तिका खाई हाथ छुरी जगत का

0: साहब जी महाराज जदों गुरु पूरा कृपा करदा है, गुर पूरा हर नाम दिरड़ाया, जदों पूरा गुरु कृपा करदा है ते हरी दा नाम, हरी परमेश्वर दा नाम दिरड़ाया, साडे हिरदे विच दिरड़ हो जांदा है।
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
3: कई दिनों तो दास एक लड़ीवार विचार आपनो सर्वन करा रहे है, सो दर कहा सो घर कहा, जित वै सर्व संभाले। इस जीवन दा लक्ष्य है उस घर दी तलाश जिथे रहना है, उस दर दी तलाश जिथे जाना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करदे ने, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। रामकली मल्ला पहला। उस दर दी तलाश कौन करेगा जो उदास है, ते उदास कौन हो जाता है जो निराश है। संसार दी आसा निरंकार दी तलाश नहीं करन देंदी। इस वास्ते जिन्ने चिर तक निराश मनुख नहीं आउंदा, उतने चिर तक उसके अंदर प्रभु दी तलाश पैदा ही नहीं होंदी। आसा मनसा सगल ते आगे जगते रहे निराशा। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा भी कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया, गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। ऐसा क्यों कह देता है? दरअसल एक इच्छा पूरी हो जाए, पूरी होंदिया होंदिया वो दस इच्छावां नूं जन्म दे जाती। बड़े ध्यान नाल सुनना, वो दस इच्छावां पूरियां होवन घट तो घट सौ इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां। अवल ते ऐसा होना नहीं, अगर वो सौ इच्छावां भी पूरियां होवन हजारां इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां, और वो हजारां इच्छावां पूरियां होवन इतनी जिंदगी नहीं है, इतना जीवन ही नहीं है। ख्वाहिशां दे बोझ तले, इच्छावां दे बोझ तले जिंदगी दब के रह जाती। हर मनुख दबिया दबिया जीवदा है। बोझ की है? इच्छावां दा। मनुख कितना भी सियाणा क्यों ना होवे, दार्शनिक है, फिलोसफर है, चिंतक है, इच्छावां दा त्याग नहीं कर सकता, बनी रहती है। एक इच्छा पूरी हो जाए दस होर पैदा हो जाती है, जीवन भर ऐसा चलता रहता है। धार्मिक ज्ञान ये कहता है, जिन्ने चिर तक मनुख संसार तो निराश नहीं होया, फिर उदास, उदास का मतलब उद आसन अपने कोल आसन, अपने नेड़े नहीं आया, तो अपने नेड़े ते वही आवेगा जो सारिया तो उदास हो गए, सब कुछ तो उदास हो गए, मनुख अपने नेड़े नहीं आउंदा। मैं दोहरा देना, एक मनुख अपनी पत्नी बारे जो कुछ जानता है अपने बारे नहीं जानता, क्योंकि पत्नी दे नेड़े अपने तो दे दूर है। एक पत्नी भी अपने पति बारे जो कुछ जानती है उसकी कमजोरियां नूं, उसके गुणां नूं, उसके अवगुणां नूं, उसके स्वभाव नूं जितना जानती है अपने बारे कुछ भी नहीं जानती। क्यों? पति दे नेड़े अपने तो दूर है। एक मित्र अपने मित्र बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। एक पिता अपने पुत्र बारे बहुत कुछ जानता है, क्योंकि नेड़े है, पुत्र दे स्वभाव नूं जानता है, पुत्र दे गुणां नूं जानता है, पुत्र दे अवगुणां नूं जानता है, अपने तो चूंकि दूर रहिंदा है, अपने दी कोई समझ नहीं, उदास अपने विच आसन, अपने नेड़े कौन आउंदा है जो सब कुछ तो निराश हो जाता है। निराशा एक बहुत वड्डी समझ है। निराश मनुख कदों आउंदा है, जद ए समझ आ जाती है दूजे तो मेरी लोड़ा की पूर्ति ते हो सकती है सुख नहीं मिल सकता, पदार्थों तो मेरे लोड़ा की पूर्ति हो सकती है मैनू आनंद नहीं मिल सकता। जैसे ये समझ आती है मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है। फिर मैं गुरु नानक देव जी महाराज का बोल थोड़े सामने रखा, आसा विच अत दुख घना, मनमुख चित लाया गुरुमुख भय निराश सुख फल पाया। प्राचीन ऋषि मुनिया ने निराश होने का उदास होने का एक जो ढंग कढ़िया सी, बे उजाड़ दे चले जाओ, बयाबान जंगल दे चले जाओ ते उत्थे रहिंदिया मन निराश होके उदास हो जाएगा। इस नाल गुरु नानक देव जी महाराज सहमत नहीं, ए नाल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहमत नहीं, ए नाल भगत कबीर भी सहमत नहीं। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। उजाड़ दे जान दी की लोड़े, सदन नो उजाड़ समझ, सदन कहते ने घर नो, बन से सदन, बन जैसा ही सदन नो समझ, घर नो ही उजाड़ समझ ले की ये तेरे घर दे। सिर्फ घर नो ही उजाड़ ना, बन से सदन सबै कर समझो, घर दे जो कुछ भी है सब कुछ उजाड़ समझ ले। बड़े कठोर जे बचन लगन गए पर मैं अर्ज करा, सिर्फ एक मनुख नू 15 दिन लई अपने घर दे च हाउस अरेस्ट कर ले आ जाए भी तू नहीं जा सकदा बाहर किधरे, यकीन जानो घर उजाड़ बन जाएगा, घर दियां दीवारां खाण नू पैणगियां। बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु अर्जन देव जी ते कहिंदे ने घर दी गल छड़ सारा शहरी उजाड़ है, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया। कहिंदे बहुत वड्डा शहर, महाराज कहिंदे ने बहुत वड्डी उजाड़, मनुख ते मनुख नालों टुटिया है, किसे दा किसे नाल कोई मेल नहीं, किसे दा किसे नाल कोई संबंध नहीं, किसे दा किसे नाल कोई जोड़ नहीं, इस नूं तो वड्डा शहर पिया कहिंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते बहुत वड्डी उजाड़। जैसे किसी नूं इस गल की समझ आ जाती है सब कुछ तो निराश होता है। हुण मैं अर्ज करा, तीन साधन विद्वान मनते ने, तीन कारण टोटली निराश होने दे उदास होने दे। प्रथम, बहुत गहरा सत्संगी होवे, गहरा सरोता होवे, बहुत गहराई नाल सुनन वाला होवे। जो गहरा सुनदा नहीं उहदी समझ उची भी नहीं हो सकदी। जिस दरखत ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाणा है उहनूं अपनियां जड़ां पाताल विच लै जाणियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकदा यकीन जानो दरख्त उपर भी नहीं उठ सकदा। जो गहरा सरोता नहीं उहदी समझ भी उची नहीं होवेगी, कतई नहीं उची हो। बोल उच्चे किसदे होणगे, समझ उची किसदी होवेगी जिहदी स्रोत बड़ी गहरी होवेगी, बहुत गहराई नाल सुणदा होवेगा। अगर गहराई नाल सुणदा है तो फिर गुरु दा शब्द चोट कर जाएगा। एक दिन दा कीता होया जप जी साहब दा जप इहनूं उदास कर देगा, निराश कर देगा। एक दिन दी जपी हुई सुखमनी इन्हों निराश कर देगी, उदास कर देगी। क्यों? शब्द तीर दी तरह लगेगा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरे सुन गुरु वचन मन तीर लगैया मन की बिरता मन ही जाने अवर के जाने को पीर परैया। कल इस पीर का मैं जिक्र किया भगत कबीर जिस ढंग नाल इसनों बयान करते ने यह भी सुन लो। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लगे तीर ऐसा लगे शब्द मन नू छोएगा मन नू चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नू चोट नहीं की थी समझ लो इसने सुनया ही नहीं है। मन स्रोता बने जबान वक्ता बने जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु ए वक्ता बने मन स्रोता बने पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है नहीं चुप करता ये सुनता ही नहीं मन दी सुनन दी आदत ही नहीं कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे च बैठे होंदे ने उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे महाराज कहिंदे ने दोहरादे हां नानक भगतां सदा विगास सुनिए दुख पाप का रास। कबीर कहिंदे ने गुरु दा शब्द मैं की सुनिया गूंगा हो गया मैं मिथ्या नहीं बोलदा कौड़ा नहीं बोलदा फिका नहीं बोलदा व्यर्थ नहीं बोलदा जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल मैं इनो भी बयान नहीं कर सकता गूंगा हो गया पर जितना रस आ रहा है इस रस नो भी मैं बयान नहीं कर सकता गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है भगत चाहते ने बनी रहे बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे ते शब्द चोट कर गया होगा उदा एक अनुभव होंदा परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही अपनी प्यास बनी रहन दे अपनी तड़प बनी रहन दे उदी ए उमंग पैदा हो जाती है उदी ए तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु हे खुदा हर वक्त मैनू तड़पण दे दुआ करन दे तेरे अगो मैं फरियाद करदा रवा नहीं मिलदा ना मिल कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करदा है प्रार्थना करदा है यकीन जानो उसे च भी आनंद है उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जेदे च महा रस है। कबीर कहिंदे मैं गूंगा हो गया नहीं बयान कर सकता गूंगा हुआ बावरा बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है बावरे तो मुराद भोला भोला हो गया भोला मनुख अंदरों बारों एक होंदा है ये मैं अर्ज कर दें। चलाक मनुख बारों कुछ होर होंदा है अंदरों कुछ होर होंदा है जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है पांच वक्त नमाज पढ़ता है जुमा रात नू जकात देंदा है रमजान दे महीने रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने तोरा मन नादानम के यजदा शनास श्री मुखवाक पातशाही दसवें तू खुदा शनास नहीं है पखंडी है झूठा है फरेबी है तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तुरामन नदानम के यजदा शनास बरामजा तो का रहा दिल खराश तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨਵਰ ਨ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦਾ ਹਨੇ ਦਿਗਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਏ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧ ਹੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ। ਉੱਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਵਰਾ ਭੋਲਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸ਼। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਗਊ ਤੂੰ ਗਊ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ। ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਖੋਤਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੇ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੱਭੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਵਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਥ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।

गए इच्छावां कर दे, कामनावां कर दे, ते दो दिन लंघ गए उड़ीक कर दे, इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, की पूरी होनी सी, असी खत्म हो गए। ध्यान नाल सुनना, सारियां इच्छावां किसे दियां नहीं पूरियां होंदियां, इस चक्कर च ना पैना। इसे वास्ते कह दिता, आसा मनसा सगल ते आगे। एक इच्छा पूरी हो जाए, मैं दोहरा दें, कम से कम 10 इच्छावां नूं जन्म दे जांदी है। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन, 100 इच्छावां नूं जन्म दे जांदी है। वो 100 इच्छावां पूरियां होवन, 1000 इच्छावां नूं जन्म दे जांदियां ने। वो 1000 इच्छावां पूरियां होवन, इन्नी जिंदगी नहीं है। मनुख ख्वाहिशां दे बोझ दे थले ही मरदा है। उमरे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गई, दो इंतजार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। नाम अव्यासी दे सामने सब तो जड़ी अड़चन आती है, इच्छावां। मनुख कहिंदा है, ए निकलन निकलन। मैं वैराग शतक राजयोगी भरतरी का पढ़ रहा सी। भरतरी कहिंदा, मौत अजमात रमा, अब तू भज आन किसे, हे कामना मैं तेनु मां कहना, मैनू तू छोड़, मैनू ना तंग कर, मेरे हृदय चो निकल। मौत अजमात रमा, अब तू भज आन किसे, तू हुण होर किसे नु पकड़, छड़ मेरा हृदय। जो तो ए भोगन हेत भजे तुम सेव तिसे, जो संसार दे भोगां दियां कामनावां करदे ने ते जिन्हां नूं संसार दे भोग चाहिदे ने, तो उन्हां दे पिछे जा, मैनूं छोड़, मैं ते सब कुछ छड्डी बैठा, तू मैनूं छोड़। भरतरी कहिंदा, राज पाठ महल माड़ियां मैं छोड़ियां ने, कामनावां नहीं छुटदियां, नहीं छुटदियां। दुखत होके कह रहे, अभ्यासी मनुख लई जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या पैदा होंदी है, जद अपने नेड़े आंदा है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। बहुत स्याणा मनुख होवे, अपनी स्याणप तो चोट खा के उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तीसरा, यह संसार तो कोई बहुत वड्डा हादसा हो गया, चोट खा गया, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। हुण मैनू कहण देना, कोई पूर्ण तौर पे अजे भी निराश नहीं होया, उदास नहीं होया, तो कहना पै गया कोई गहरा सरोता नहीं है, सत्संगी नहीं है। दूसरा, ये कोई बहुता अकलमंद भी नहीं है, कोई बहुत वड्डी अकल दा मालक नहीं है, समझ दा मालक नहीं है। तीसरा, अजे संसार तो कोई इसनू बहुत वड्डी चोट नहीं लगी। इन्हां तिन्हां विचों कोई एक घटना भी घटे, मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। हुण मैं अर्ज करां, शब्द की चोट खा के जो निराश होया है, उदास होया है, यह आत्म क्रांति करेगा, खुद नूं बदलेगा, कहेगा, ऐ गुरु अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां, अपने ढंग नाल मैं जी के देख लिया कुछ भी नहीं, तेरे ढंग नाल जीवां। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा दी है या संसार तो चोट खा दी है, खतरा है, खुद नूं बदलन दी तां ते किधरे खुद नूं खत्म ना कर बैठे, खुद नूं बदलन दी तां ते किधरे खुद नूं भुलाण दी कोशिश ना करे, हर वक्त नशे दी जी गलतान रहण लग पे। संसार तो चोट खा के भी कुछ लोग टोटली निराश उदास होके आत्म क्रांति करते रहने, खुद नूं बदलते रहने, जैसे महात्मा बुद्ध।

0: 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस

आकार रूप देच। पहले पत्थर प्रकट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया, वो पत्थर दे रूप देच प्रकट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नु पूजदा रहे है। ये भी मैं अर्ज करा, सारी दुनिया च पत्थर भी पूजे जाते, बनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जाते हैं, और पशु पक्षी भी पूजे जाते। अज भी स्नैक टैंपल बहुत वड्डा चाइना दे चाहे मलेशिया दे चाहे सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करते हैं। भारत दे च गऊ दी पूजा, सप्पां दी पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्यौहार है। दरख्तां दी पूजा, पिपल दी पूजा, जंड दी पूजा, बोड़ दी पूजा, बेरियां दी पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे जिस जिस पत्थर नो सुभाग मिल गया, पत्थर ही हीरा बन जाता है, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुकराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जाता है। ये भी मैं अर्ज करा, नीलम दा मोर अकाल तख्त ते पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड देश नीलम दी मूर्ति है महात्मा बुद्ध, कहिंदे ने घट तो घट वो मूर्ति अज दे हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए दी है। पूरा नीलम दा पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैं ते ये भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, वनस्पति भी कीमती हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फूल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है, ऐते वनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने ऐते हंस वर्ग है, कोई बड़ा शरीफ से भले मानस हो वैसे ही कहने हैं निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर होवे तो इसी कह देने निरा शेर है, तो शेर देना है, शेर है। जिंदगी विच कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया, कहने ते हीरे वर गए, निरा हीर है। तस्बीहां ते देंदे पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल अगे। वनस्पति देच महक आ जाए ते कोमलता आ जाए, ते मनुख देच कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े हुए। पशुआं देच दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए ते मनुख देच ना आवे तो ये नालों पशु चंगे ने, कुछ पशु चंगे ने। ये भी मैर्ज कर दें, मनुख हो के चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थरा चमक पैदा हो गई। मनुख हो के हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी ऐ ते हीरा है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख दा मन परमात्मा हो जाता है, ईश्वर हो जाता। बिगड़ो कबीरा राम दुआई, साच भयो अन कदे न जाय, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यो पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसे दा जागया इंसानियत उस दे च उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिहड़ा अचेत भाग मन दा है वह पशु होवेगा, वनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरों के संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जाग है, बाकी सुत्ता पे है, जिवें पत्थर सुत्ता होया। पत्थर पूर्ण सुत्ता होया, परमात्मा पूरा जागया होया। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नु थोड़ा जगांदी है वनस्पति दे रूप च, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियां दे रूप च, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियां नु मनुख दे रूप च, ते मनुख नु खुला छोड़ देता है हुण तू आप जागा।